वेदर अपडेट। आधा दिन तो निकल चुका है लेकिन बाकी बचे हुए 12th ऑफ सितंबर के लिए बताया गया है कि क्लाउड डेवलपिंग दिस इवनिंग एंड गस्टी साउथ वेस्टर्लीज विंड आप महसूस करने वाले हैं। तो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि विंड स्पीड्स आर प्रीटी हाई, तो प्लीज़ टेक एक्सट्रीम केयर।

0: Chikash.
1: Yo.
0: Big Radio Pub.
2: बारह तारीख सितंबर हो चुका है, आज है शनिवार और 12:04 हो चुके हैं। ऐसे में मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ। रेडियो पब शुरू करते हैं अभी से लेकर शाम 6 बजे के बीच। कैसे हैं आप? आई होप आपका वीक बहुत ही बढ़िया गया है एंड सैटरडे उतना ही बेहाल गुजर रहा है। जहाँ कहीं पर भी है आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 FM एंड रोबा पर सुन रहे हैं। तो भाई क्या बात है, बताइएगा आप कहाँ पर है और किन के साथ में आज आप हमारा ये कार्यक्रम सुनने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में तो आप जानते ही हैं कि आपके लिए भर भर कर हम एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की जानकारियां लेकर आते हैं। तो लेट मी नो कि किस खास स्पोर्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। 5599 ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है, यहां पर आप मैसेज करें। अगर आप बिजी हैं एंड आप ऑनलाइन नहीं चेक कर पा रहे हैं, लेट मी नो कि किस खास स्पोर्ट के रिजल्ट को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आई विल गेट दैट टू यू। वैसे मेरी लिस्ट में काफ़ी स्पोर्ट्स है, रग्बी है, सोका है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल भी है आज, तो इसके बारे में हम बातें करेंगे और फिर आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है इसकी भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं राइट थ्रू टिल 6 PM दिस इवनिंग। मैं हूं जिकाश, आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूं। समय, टाइम, इसके लिए बताया गया है कि समय किसी को सफल नहीं बनाता ना। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उसका समय अच्छा चल रहा है। भाई समय अच्छा नहीं चल रहा है, उसने अपने समय को अच्छा बनाया है। समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, फर्क इतना है कि कौन उसका किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो भाई समय आपके पास है, आप भी समय का सही उपयोग कीजिए। और सही उपयोग है रोबा खोलिए और हमें सुनते रहिए। स्वागत है आप सभी का ऑन रेडियो पब। क्योरा।

रोवो पर और 104.2 एफएम पर आप रेडियो पॉप का मजा ले रहे हैं. एंड जस्ट बिफोर वी डाइव डीपर इनटू द प्रोग्राम, आपको हम बता दें अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. पहले तो आपको हमारे पास ईमेल करना है अगर आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड यू वांट पीपल टू नो अबाउट योर इवेंट्स. तो buzz@hamfm.com इज द ईमेल जहां पर आपको अपने इवेंट्स की जानकारी हमारे पास भेजनी है एंड आपकी आपके इवेंट के बारे में हम तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं. तो देखते हैं, श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में यहां पर गणेश उत्सव ये शुरू होने वाला है मंगलवार 15th सितंबर से लेकर संडे 20th सितंबर के बीच में. हर रात 7:20 PM से 9 PM के बीच में श्री गणेश कथा होगी. फाइनल डे 20 सितंबर को पूजा शुरू होगी सुबह 9 बजे एंड गणेश विसर्जन किया जाएगा दिन में 12 बजे से. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप राम मंदिर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. 7 डे श्रीमद् भगवत कथा ये शुरू होने वाली है 14th ऑफ सितंबर से लेकर 20th सितंबर के बीच में. ये कथा होने वाली है 7:30 PM से 9:30 PM तक एट भारतीय मंदिर जो सेलिब्रेट कर रहा है द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिशवाई विथ ब्रजरास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किंकर जी फ्रॉम श्री धाम वृंदावन. नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ये हैं. तो आपको जाना है भारतीय मंदिर पर 14 से लेकर 20 सितंबर के बीच में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के लिए हर रात 7:30 to 9:30 PM के बीच में. इसके अलावा नॉर्थ शो भारतीय संगम ये सभी को इनवाइट कर रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को सुबह 11 बजे से यहाँ पर पूजा होगी और ये स्थित है तकपूना वो मेमोरियल हॉल में. एड्रेस है 7 The Strain तकपूना ऑकलैंड में. यहाँ पर फ्री पार्किंग आपके लिए उपलब्ध की जाएगी. 11 o'clock से गणेश पूजा और सत्यनारायण पूजा है. 1 पर महाप्रसाद, 2 पर कल्चरल इवेंट्स होने वाले हैं, 4 पर ढोल ताशा और फिर क्लोजिंग सेरेमनी से गणेश चतुर्थी को मनाया जाएगा. तो अगर आपके पास भी कुछ जानकारियां हैं जो हमारे पास आप पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम तमाम लोगों तक पहुंचाए, प्लीज़ गेट इनटू कॉन्टैक्ट विद अस ऑन buzz@hamfm.com. याद रहे फीजी कीर्तन रिकॉर्डिंग, इसके बारे में आपने तो सुना ही है कब हो रहा है कहाँ हो रहा है. अगर आप कीर्तन गायक है, मंडली है आपके पास एंड आपको कीर्तन रिकॉर्डिंग करवानी है, गेट इन कॉन्टैक्ट विद अस. इसके बारे में और भी जानकारी हम आपको पहुँचाएंगे बस थोड़ी ही देर में.

0: Big Radio Pub. You're listening to Chikash.
1: पच्चीस मिनट हो रहे हैं दिन में 12 बजकर। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन हम रेडियो पब में। मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। आज है 12 तारीख सितंबर एंड टुडे इज द डे जब वॉरियर्स और डॉल्फिन्स खेलने वाले हैं इन द क्वालिफिकेशन राउंड ऑफ द NRL। कल खेल हुआ बिटवीन रेबिटोज एंड नाइट्स इन द एलिमिनेशन फाइनल एंड रेबिटोज की हार हुई एट द हैंड्स ऑफ नाइट्स 20-10 से। एलिमिनेशन फाइनल नंबर 2 ये आज 9:50 PM पर खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड है वॉरियर्स और डॉल्फिन्स के बीच में। तो इसमें क्या होगा ये पता लगेगा फ्रॉम 6:05 PM टू नाइट। और उसके बाद में टुमारो द सेकंड एंड द लास्ट क्वालिफिकेशन राउंड में पैंथर्स और रूस्टर्स आमना सामना करने वाले हैं टुमारो एट 6:05 PM।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: Radio Pump. Yeah.
1: काफ़ी लोग हैं जो फिजी फुटबॉल एसोसिएशन को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, स्पेशली द टूर्नामेंट्स. फिजी फैक्ट हो गया, बैटल ऑफ द जाइंट्स हो गया जो अभी फिलहाल जारी है, एंड दिस इज़ द सेकंड वीकेंड जहां पर फाइनल्स खेले जा रहे हैं बा में. और सेमीफाइनल में बा और सुबह ये आमना सामना करने वाली है. तो अगर आप

0: Idea.
1: Streaming on Rover.
2: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
3: क्या बनाते हैं इन कबाब के special, Chef Alex?
2: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
3: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
2: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
3: 100% authentic and pure as mother's love.
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Thinking of updating your bathroom? Refresh your home with Myco. With 80 years experience, our expert team are here to help. Discover premium brands, style and quality all in one place. Make your dream bathroom a reality with Myco.
6: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan, plus 50% off sleepy head beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
7: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing or buying a business or commercial property. Permission can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari good brands me.
8: Yeah. Big Radio Pub.
10: बारह मिनट रह चुके हैं एक बजने में एंड टुमारो 13th ऑफ सितंबर कल सुबह एक बहुत ही धमाकेदार खेल होने जा रहा है द फोर्थ मैच बिटवीन द ऑल ब्लैक्स एंड द स्प्रिंगबॉक्स दिस इज़ हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो काफ़ी सप्ताह बिताने के बाद इन साउथ अफ्रीका ऑल ब्लैक्स आर गोइंग टू प्ले द स्प्रिंगबॉक्स ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड आई वुड से क्योंकि ना ऑल ब्लैक्स के न्यूजीलैंड में यहाँ पर गेम है ना ही साउथ अफ्रीका में गेम है तो काइंड ऑफ दिस माइट बी लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बोथ द टीम्स तो इसमें स्टार्टिंग 15 में इथन डी ग्रूट कोडी टेलर फ्लेचर न्यूवेल पैट्रिक थुपोलोतु सैम डेरी थुपो वाई इथन ब्लैकएडर पीटर लकाई कैम रोयगार्ड रिची मोंगा स्टार्टिंग एट नंबर 10 नाउ आई वॉज वेटिंग फॉर दिस आई थिंक दिस माइट बी द चेंज दैट विल लीड the All Blacks to a victory after two straight losses at the hands of the Springboks. So Rishi Bunga coming in at number 10 jersey pehenne wale hain. Josh Mobi number 11 par rahenge. Jody Barrett bhi team mein hai. Anton Leonard Brown, Will Jordan and Damian McKenzie. I think this is a powerful lineup and a brilliant lineup heading into the final match between the All Blacks and Springboks in this tour. So kya sochte hain aap about this lineup? ज़रूर हमें बताएं कि इसके बारे में क्या आप सोचते हैं एंड ऑल्सो सुबह और बाकी बीच में जो खेल होने वाला है फ्रॉम 2:30 PM टुडे इसमें कौन सी टीम जीतेगी दीन आप सोचते हैं कि सुबह विल बी कमिंग आउट विक्टोरियस ओवर बा वेल देखते हैं इधर किसी ने बा भी लिखा है नाम नहीं लिखा है भाई नाम ज़रूर लिखे

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुनें। हम
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। Available at all leading stores.
2: Go deal hunting this weekend at Briscoe's and bring home the savings with price-winning deals and incredible savings store-wide on the best brands for every room of the house. Briscoe's is the place. Saving is the promise till Sunday. See online for T's and C's.
3: Versace, Lancome, Marc Jacobs, Cavalli, Guess, Elizabeth Arden, First Aid Beauty.
4: Oh, there's too many. Just say all the biggest names.
3: Oh, okay. All the biggest names in beauty, 15 to 25% off. Big Beauty Week, 9 to 15 September at Life Pharmacy.
5: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Get 20% off selected Guardian fence panels and accessories. And get your seeds really growing with Yates 5-litre Black Magic Seed Raising Mix, now only $5.99. Mitre 10, your home for outdoor living.

0: Big Radio Pub.
1: एक बजने को आए हैं एंड रेडियो पर आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं युजकाश आपके साथ यूं ही बना रहूंगा राइट टिल 6 पीएम। नाउ कीवी सेवा के बारे में हमने कहा था, आपको बताएंगे टोटल ऑफ 138 बिलियन डॉलर्स हैव बीन स्टैश्ड इन कीवी सेवा बाय एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड या फिर हैव ऑप्टेड इन टू डिडक्ट कीवी सेवा सेविंग्स। तो न्यूजीलैंड में 138 मिलियन डॉलर्स ये कीवी सेवा में अभी है फिलहाल, एंड दिस मनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय अराउंड 30 कंपनीज रजिस्टर्ड एज कीवी सेवा प्रोवाइडर्स। नाउ लुकिंग एट दोज नंबर्स, कुछ लोगों को शायद कुछ कंसर्न्स होगा बाय द शियर वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टेड इन सच अ स्मॉल नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आफ्टर ऑल इट वाज़न्ट दैट लॉन्ग ago that the collapse of around 67 finance companies erased about $8 billion in investor wealth. Ye pichle saalon mein hua hai, with average mom and dad investors bearing the brunt of it. Kyunki jis company ko aapne ye zimma diya hai ki wo aapke paise sahi jagah par lagayegi, agar wo company doob jati hai to pichli baar aisa hua tha ki aapke paise bhi doob gaye the. Lekin this good news kyunki Kiwi Seva has been developed to ensure we don't see a repeat of this kind of catastrophic financial event for New Zealand investors. James Douglas, who is the newly appointed independent chair of trustees executors, इन्होंने कुछ बातें आम की है। इन्होंने कहा है कि all Kiwi Seva funds are held by the custodian and trustee firm members, which means they are segregated from the provider's own financial assets. Your money is pigeonholed effectively by the custodian. So if a provider were to collapse, there would be no effect on the security of a member's funds. Much of this comes down to how Kiwi Seva providers actually make money versus where your investments go. Your Kiwi Seva provider earns money by charging you management fees for your business. This ranges from as low as 0.23% for passive index funds to more than 1% per annum depending on the level of active management. However, your hard-earned Kiwi Seva contributions will themselves be held separately to protect you from a collapse in the provider. This is what makes Kiwi Seva distinct from finance companies of the 1990s. So many of those businesses used the funds raised from investors to invest directly into property development schemes they were operating. So, bhai, chinta karne ki koi baat nahi hai. Aapke paise jahan bhi lag rahe hain, ये आपको आमदनी दे रही है नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन अगर आपके कीवी सेवा प्रोवाइडर इनके कंपनी को कुछ होता है, आपके पैसे सुरक्षित रहने वाले हैं।

Yo. Big Radio Pub. Yeah. अगर आप सीरियल खाते हैं एंड इफ़ आपके घर में बच्चे हैं जिनके लिए आप सीरियल लेकर आते हैं, तो अर्लियर दिस वीक देयर वाज अ रिकॉल फॉर ए सीरियल. क्या इसके बारे में आपको मालूम है? वेल, वूलवर्थ्स ब्रांड का जो मल्टी ग्रेन सीरियल है 500 ग्राम्स वाला, जिसमें बेस्ट बिफोर डेट है ऑफ 30th of April 2027, दिस वॉज अफेक्टेड बाई द रिकॉल. द प्रोडक्ट वॉज सोल्ड इन 500 ग्राम कार्डबोर्ड बॉक्स. अगर आपके घर पर सेलेक्ट या फिर वूलवर्थ्स ब्रांड का मल्टी ग्रेन सीरियल आता है 500 ग्राम्स वाला, इसको रिकॉल किया गया है एंड सिर्फ इसी ब्रांड को रिकॉल किया गया है. दिस रिकॉल डज नॉट अफेक्ट एनी अदर वूलवर्थ्स ब्रांड प्रोडक्ट्स. द प्रोडक्ट वॉज सोल्ड एट वूलवर्थ्स, फ्रेश चॉइस एंड सुपर वैल्यू सुपर मार्केट्स थ्रू आउट न्यूजीलैंड. द प्रोडक्ट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू कुक आइलैंड्स, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, मलेशिया, न्यूए एंड सामोआ एज वेल. एंड अगर आपने ऐसा सीरियल ख़रीदा है, वूलवर्थ्स ब्रांड मल्टी ग्रेन सीरियल 500 ग्राम्स वाला, बेस्ट बिफोर डेट चेक करें, 30th of April 2027 का है. तो कस्टमर्स आर आस्क्ड टू चेक द बेस्ट बिफोर डेट ऑन द प्रोडक्ट एंड अफेक्टेड प्रोडक्ट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड. There have been no reports of related injury. However, if you have consumed this product and if you have any concerns about your health, seek medical advice. Customers should return the product to their retailer for a full refund. तो भाई चेक करें पेंट्री में, अगर आपके पेंट्री में ये मल्टीग्रेन वाला सीरियल है फ्रॉम वूलवर्थ्स जिसका एक्सपायरी डेट है 30th of April 2027, डू नॉट यूज़ इट एनी मोर. अगर आपने इसको यूज़ किया है और आप बीमार फील कर रहे हैं, तो डू गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप एट द डॉक्टर्स एंड टेक दिस प्रोडक्ट टू एनी वूलवर्थ्स या फिर फ्रेश चॉइस सुपर वैल्यू सुपर मार्केट एंड आपको आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे.

0: Playing Bollywood's biggest hits. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbi, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghoome aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
7: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
8: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
10: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
9: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
10: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
9: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: Powerball is 10 million and must be won this Saturday. That's right, we're getting ready for the Powerball game change this weekend. So there's $10 million that must be won. Get your tickets.

Radio Pub. आपको तो मालूम ही है कि नवंबर 7th इज द डे जब जनरल इलेक्शंस यहाँ पर न्यूजीलैंड में होगा. मालूम है ना, अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है देन यू आर एलिजिबल टू वोट. क्या आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक की है? प्लीज़ डू सो, क्योंकि दिस माइट बी द फाइनल टाइम एज अ परमानेंट रेसिडेंट आप वोट कर पाए. क्योंकि the party that is the New Zealand First ye propose kar raha hai amendments into how citizenship will be offered to people in New Zealand. Kyunki agar aap permanent resident hai to aapko agar New Zealand First aa gaya to aur bhi zyada intezar karna padega. To aise se kuch policies hai jo samne aaye hain, jaise ki Winston Peters ne kaha hai, if you want to get NZ Super, that is the QV Seva, then you need to sign up. Be proud enough of New Zealand and show full commitment to our country and become a citizen. Our taxpayers should no longer continue to be used as a bottomless pit by some migrants to our country. So this is about economic fairness and it's about putting New Zealanders first. So bhai, kya aapke paas New Zealand citizenship hai? Hai to acha hai, nahi hai to iske liye आप ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दें. एंड मेक श्योर यू गो थ्रू एवरी पार्टीज़ जो भी वो कैंपेन कर रहे हैं, और ये ज़रूर आप देखें कि आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए कौन पार्टी क्या कुछ कर रहा है, एंड तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाएं अबाउट हुम यू वांट टू वोट.

हनुमान अंश, इस फिल्म के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुन लिया ही होगा एंड इंडिया में तो रिलीज़ हो चुकी है पिछले वीकेंड। ये फिजी में रिलीज़ हुई एंड थिएटर्स में मूवी प्रीमियर होने से पहले वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसके बाद में फिल्म चलाएगी। तो भाई काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड में कब हम ये फिल्म देख पाएंगे। वेल, इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि 17th ऑफ सितंबर से ये फिल्म यहाँ पर आप एंजॉय करने वाले हैं। तो हमारे तमाम सिनेमा हाउसेज में, जैसे कि इवेंट सिनेमाज हो गया, होइट्स हो गया, यहाँ पर 17th ऑफ सितंबर से ये फिल्म आप एंजॉय करने वाले हैं। हनुमान अंश, जहाँ पर डायरेक्टर है विशाल चतुर्वेदी और कास्ट में चंदन आनंद, भगवान दास पटेल, नेहा परंजपे, अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार है। इस फिल्म के बारे में अगर आप जानते हैं तो शायद आपको मालूम ही होगा कि किस दिव्य बाबा या फिर संत पर ये फिल्म आधारित है। अगर आपको मालूम है, आपको जवाब हमारे पास भेजना है। तो सवाल है, हनुमान अंश किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, किस व्यक्ति की जीवन कथा है, ये आप हमें बताएं। 5599 पर अपना जवाब भेजिए अपने नाम के साथ में। फिल्म हनुमान अंश वो कौन से बाबा के जीवन की कथा पर या फिर लाइफ स्टोरी पर आधारित है जिन्होंने सनातन ध्वजा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो 5599 पर ये जवाब आप हमारे पास भेजे। शाउट आउट गोज़ टू जिम विजस, जो एक बहुत ही नई और स्मॉल वीज़ा एडवाइजरी फर्म है ऑकलैंड में, एंड दे आर हेल्पिंग इमिग्रेंट्स गेट सक्सेस इन देयर कीवी ड्रीम। 10 साल से ज़्यादा का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है विथ विनीत एंड ऋषि। तो इनको आप कॉन्टेक्ट करें एट zimvisas, that's zymmvisas.co.nz पर।

सवाल हमने आपसे किया है अबाउट द मूवी हनुमान अंश. कौन से खास महाराज बाबा के ऊपर ये फिल्म आधारित है एंड बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस फिल्म को, वर्ल्ड वाइड अटेंशन ग्रैब कर रहा है एंड सितंबर 17 से न्यूजीलैंड में भी इसको आप देख सकते हैं. हनुमान अंश किस खास महाराज, किस बाबा पर आधारित है ये फिल्म, ये आपको बताना है, हमारे पास मैसेज भेजना है. एंजॉय है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. हितेश, आपका भी मैसेज हमारे पास आया था. किसी ने लिखा है राम करौली, वेल सोचना पड़ेगा इसके बारे में. अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर बताएं कि हनुमान अंश किस खास सज्जन के जीवन पर आधारित है दिस ऑसम ऑसम मूवी. वैसे हमारे साथ में आप जुड़े रहें, हम बातें करना चाहते हैं विथ सम पेट ऑनर्स, स्पेशली डॉग ऑनर्स. अगर आप हैं, आपसे हम बातें करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट आवर.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: दो बजकर तीन मिनट हो चुका है. रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. सवाल हमने पिछले घंटे पर किया था, हनुमान अंश किस दिव्य महाराज बाबा के ऊपर आधारित है. फिल्म आधारित है ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा जी. तो इफ़ यू हैव सेंट दैट आंसर दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड हनुमान अंश ये सिनेमाज में आने वाली है फ्रॉम द 17th ऑफ दिस मंथ. देर इज़ आने वाले ही सप्ताह थर्सडे से ये फिल्म आप एंजॉय कर सकेंगे इन अ रेंज ऑफ थिएटर्स राइट हियर इन न्यूजीलैंड. आइए इस घंटे की शुरुआत करते हैं विद अनदर क्वेश्चन. क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट क्या है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट इन दिस वर्ल्ड? 5599 पर आप अपना जवाब भेज सकते हैं. रेडियो पर मजा ले रहे हैं आप. मैं हूं जिकाश. थोड़ी देर में आपको हम अपडेट करेंगे अबाउट द 11th सनातन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट. इसमें कौन कौन सी स्पोर्ट्स को खेला जाएगा, कहां कहां पर गेम्स होने वाले हैं, ये सब जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: सवाल हमने किया है कि क्या आपको मालूम है कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रूट. नाउ देयर कैन बी टू आंसर्स, वन दैट ग्रोज ऑन ट्री, द अदर जो फैलता है करेले की तरह. तो जो भी हो आप हमें जवाब दें. एक है वर्ल्ड्स हेवीएस्ट फ्रूट, द अदर वन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रूट ऑन अ ट्री. 5599 पर आप जवाब भेज सकते हैं. हमने कहा था कि 11th सनातन वर्ल्ड कप के बारे में आपको हम बताएंगे एंड वी आर होस्टिंग दिस राइट हियर इन ऑकलैंड. और इस साल सनातन वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम्स आ रही हैं, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड न्यूजीलैंड से. और 3rd September से 4th October के बीच में खेल खेले जाएंगे. एंड फुटबॉल के साथ में नेटबॉल और वॉलीबॉल और इसके साथ में गोल्फ कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए गए हैं. तो वेल, इफ़ यू आर अ फुटबॉलर, नेटबॉलर, वॉलीबॉल खेलते हैं आप या फिर गोल्फर है आप, यू हैव अ रेंज ऑफ गेम्स जो आप चेकआउट कर सकते हैं. फुटबॉल में मल्टीपल कैटेगरीज है, जैसे कि प्रीमियर, ऑल एज, अंडर 18 बॉयज, वेरियस मास्टर्स ग्रेड्स है, ओवर 40s, ओवर 45s, ओवर 50s एंड ओवर 55s. नेटबॉल फीचर्स ओपन एंड ओवर 40s मास्टर्स डिवीजन. वॉलीबॉल इज ओपन टू पार्टिसिपेंट्स एज्ड 14 एंड अबव. एंड गोल्फ एंड इंडिविजुअल एंड टीम कॉम्पिटिशन फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रोग्राम. एंड स्पेसिफिक वेन्यूज अगर आप जानना चाहें तो वेल, फॉर फुटबॉल दिस विल बी प्लेड एट बिल मैकनली पार्क, विलियम ग्रीन डोमेन एंड ओमिस्टन प्राइमरी फुटबॉल टर्फ, वाइल द नेटबॉल कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड एट द ऑकलैंड नेटबॉल सेंटर. वॉलीबॉल के मैचेस खेले जाएंगे एट द YMCA लगून स्टेडियम. एंड गोल्फ कॉम्पिटिशन ये स्केड्यूल किया गया है फॉर हुआपाई गोल्फ क्लब. सवाल आपसे हमने किया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रूट क्या है, ये आप हमें बताएं.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind. Sirf Rova par.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
4: अब हमारा क्या होगा
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
7: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on now at Pack and Save. The end of the savey pack and save message coming in 3, 2, 1.
8: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.

0: Radio Pub.
1: बटल ऑफ द जज टूर्नामेंट जो अम्बा में चल रहा है, इसमें फिर सेमीफाइनल शुरू हो चुका है बिटवीन दी बा फुटबॉल क्लब एंड सुबह फुटबॉल क्लब इन बा, और अभी भी दोनों टीमें नील से बराबर है। तो इस पर अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे जैसे हमारे हाथ कोई भी जानकारी लगती है।

0: Radio Pub.
1: सवाल हमने आपसे किया था अबाउट द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड एंड इट इज जैक फ्रूट जो ग्रोज ऑन अ ट्री. नाउ टॉकिंग अबाउट द हैवीएस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, वेल दैट इज अ पम्पकिन. नाउ ऐसा वैसा पम्पकिन नहीं जो आप अपने बैकयार्ड में बोते हैं. द अटलांटिक जायंट पम्पकिन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हैवीएस्ट फ्रूट ओवरऑल, व्हाइल द जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट दैट ग्रोज ऑन अ ट्री. रिकॉर्ड वेट फॉर द हैवीएस्ट फ्रूट which is a pumpkin, this was over 1,246 kg. Botanically a fruit hai pumpkin because it develops from a flower and contains seed, and the record holder for the heaviest pumpkin is Travis Ginger, who is in USA. Inke dwara isko grow kiya gaya tha. Largest jackfruit record weight reaches up to 120 pounds, that is 55 kg. Now I haven't seen a kathal that is 55 kg. 35 inches in length also, so 35 inches is about almost a meter. To bhai itna bada kathal kabhi aapne dekha hai jo almost 1 meter ka hai and 55 kg weigh karta hai. Grows directly on the trunk and thick branches, iske bare mein to sabhi jante hain, and features sweet pods with a flavor like a mix of banana, mango and pineapple. Ye to lagbhag everyone listening to me knows how a jackfruit tastes. Aapne khaya hai jackfruit, especially uska jo koa hum kehte hain, what do you call that? Fiji mein hum kathal ka koa kehte hain, that we eat. Have you tried that? Paka hua kathal ka jo beej hota hai uske bahar ka hissa. Well, khaya hai to badhiya hai, nahi khaya hai to aap try kar sakte hain. Kai supermarkets mein frozen section mein aapko ye milega. Lekin information wise, jackfruit is the largest tree fruit. The overall heaviest fruit is the pumpkin. Now, humne kaha tha ki aap se baatein karenge about pets. Agar aap ek pet owner hai, especially if you are a dog owner and if you are not a pet owner. दुनिया में दो तरह के लोग हैं ना, वन विद पेट्स द अदर विदाउट पेट्स. एक दूसरे को जज किया करते हैं. नाउ आई नीड सम इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर अ डॉग ओनर. आप हमें कॉल करें, कुछ बातें करेंगे अबाउट ओनिंग डॉग्स ऑन 0800-004-866.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स

0: Bunnings has great value nailed for your outdoor spring cleanup with 30 seconds 5-litre outdoor cleaner concentrate, only $25.95, or Scott's large reusable garden waste bag, just $12.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings
1: Warehouse. Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
2: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
3: Bollywood ka asli blockbuster. Poore shehar pe kabza hoga, raaj hoga. Playing Bollywood's biggest hits. Yo. Big Radio Pub.
4: तीन बजकर एक मिनट हो चुका है. मैं हूं जिकाश. रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं. बामे पीजी फुटबॉल एसोसिएशन के तहत के अंतर्गत बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें सेमीफाइनल का पहला मैच ये हाफ टाइम तक पहुंच चुका है. बा लीडिंग सुबह बाय 1-0. सेकेंड हाफ का खेल बस शुरू होने वाला है. अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे. पेट ऑनर्स, स्पेशली डॉग ऑनर्स से हमने कहा था हम बातें करेंगे और दो लोगों ने कॉल किया और यूं ही चिटचैट करते हुए ये पता लगा कि दो अलग ही विचारधाराएं हैं बिटवीन द टू पीपल हु कॉल्ड. बोथ आर डॉग ऑनर्स, दे हैव ओन डॉग्स फॉर क्वाइट सम टाइम एंड एक का कहना है दे वेल बोथ एक्चुअली अडोर लव देयर डॉग्स, लेकिन एक ने कहा है कि द कॉस्ट टू कीप अ पेट डॉग इन न्यूजीलैंड इज humongous. That's the word that he used. Now, I know what he means. I don't own a dog, lekin iske bare mein maine research kiya hai. Yes, the cost to own a pet might be something that you should consider agar aap pet khareedne ke ya phir own karne ke bare mein soch rahe hain. Go out there, find out all the medical costs. Yehi nahi, आपको कितना engaged रहना होगा with your pet, उसको सैर कराना मतलब वॉक कराना या उसके बाद उसका वेट मैनेज करना, उसको पेट के पास लेकर जाना, उसको प्रॉपरली ट्रेन करना ताकि लोगों को वो काटे ना, कैसे सोशलाइज वो करता है. एकदम से अ फुल टाइम पेरेंट का काम आपका हो जाएगा इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ऑनिंग अ डॉग. ये सेकंड कॉलर ने कहा. फर्स्ट कॉलर इन्होंने कहा कि वेल ही डजंट हैव किड्स सो ही डजंट माइंड ऑनिंग अ डॉग. तो भाई आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑनिंग अ पेट? आर यू फॉर ऑनिंग अ पेट या अगेंस्ट ऑनिंग अ पेट? डू लेट मी नो. कॉल कर सकते हैं आप हमारे पास ऑन 0800-004-866 पर. बेनाइफा, थैंक यू सो मच फॉर आपके मैसेज के लिए. यू आर अ डॉग ऑनर फॉर 17 ईयर्स ओल्ड जस्फा. आप सभी को इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: काफ़ी लोगों का मानना है कि लाइफ बिगिंस एट 40, एंड ये उन्हीं लोगों का मानना है जो 40 हो चुके हैं या फिर 40 होने वाले हैं, क्योंकि ये दिस केम अलोंग आफ्टर एक सॉन्ग रिलीज हुआ था. शायद आपको याद है, नहीं याद है तो आई फिल यू इन. सॉन्ग है बाय डेव एंड डायनेमोस कॉल्ड लाइफ बिगिंस एट 40, और काफ़ी क्रिंज मोमेंट था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बैक इन द डे. 1983 में ये गाना आया था, एंड जो लोग 30 से नीचे थे दे फेल्ट अ लिटिल बिट क्रिंज, क्योंकि वो दे थॉट दे वर लिविंग देयर लाइफ एंड हियरिंग दैट लाइफ ओनली बिगन एट 40, तो ये सोच रहे थे कि भाई हम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं. लेकिन दिस वॉज फॉर पीपल हु वेर टर्निंग 40 और हैव हैड टर्न्ड 40. लेकिन एज फार एज लाइफ स्पेन गोज, इसमें तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि पीपल आर लिविंग लॉन्गर, सो चांसेस आर इफ़ यू आर 40 यू प्रोबेबली हैव अ फ्यू मोर डेकेड्स अहेड ऑफ यू येट. योर 40s एंड बियॉन्ड कैन ऑफर न्यू बिगिनिंग इवन फॉर दोज हुज लाइफ इज नॉट व्हाट दे होप फॉर. सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर है पॉल स्पूनली, इन्होंने बताया कि कीवीज आर एक्सपीरियंसिंग अ डिलेड ट्रांजिशन टू अडल्टहुड एंड इट हैज सीन द की लाइफ मार्कर्स और पिवट पॉइंट्स इंक्लूडिंग रिटायरमेंट पुश्ड फॉरवर्ड बाय अराउंड 10 years, the age at which people were considered adults was also changing. Now, अगर इसको politics में घुसा दिया जाए कि people, the age at people that are being considered to be adults is also changing, तो क्या voting age ये relook किया चाहिए, करना चाहिए इसको? Well, that's another topic. इस प्रोफेसर का कहना है कि इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट ऑल दोज मेजर लाइफ पॉइंट्स जैसे कि पार्टनर, चिल्ड्रन, करियर, हाउस, देन आई थिंक यू आर मोर लाइकली टू गेट आंसर एट एज 35, क्योंकि अराउंड द एज 35 मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पार्टनर्स, चिल्ड्रन, अ करियर एंड अ हाउस. आई एम नॉट सेइंग ऑल. इन टर्म्स ऑफ अचीविंग की माइलस्टोन्स, यू प्रोबेबली गॉट टू say it begins somewhere in the mid-30s and continues from there. Midlife can offer another chance. Increasingly, there is no normal to benchmark ourselves against that alone leaves a bit more room for how you roll. It left Spoonley asking whether middle age itself might be a thing of the past. So, kya aap bhi believe karte hain ki life begins at 40? Does the midlife crisis still hold? What age do you think people become adult in today's world? क्योंकि मेरे सामने ऐसे भी कई लोग हैं जो 30s के हो गए, 35s के हो गए हैं, लेकिन बचपना इनका छूटता नहीं है. कभी कभी गुस्सा आता है इनको देखकर. आपके आसपास है क्या ऐसे कुछ लोग?
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

एशियन गेम्स 26 ये शुरू हो चुका है फ्रॉम थर्सडे और अलग अलग कैटेगरीज में मेंस टीम्स खेल रही हैं एंड इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एज सून एज आई गेट टू द फुल लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम डे वन एंड डे टू. इसके अलावा अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो मैं कल पढ़ रहा था एंड आई थिंक कल की इससे पहले वाले रोज़ मैंने एक आर्टिकल भी अपडेट किया था ऑन आवर फेसबुक पेज अबाउट एप्पल आईफोन डुओ. इसके बारे में क्या आपने सुना है? वेल इट इज़ फाइनली कैचिंग अप विथ सैमसंग. आई हैव एन एप्पल आईफोन 17 मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड थैंक्स टू माई कंपनी मुझे ये फ़ोन मिला है. आई वुडन स्पेंड $2,000 ऑन अ फोन, लेकिन $2,000 तो शायद बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू व्हाट पीपल आर गोइंग टू पे फॉर द एप्पल आईफोन डुओ. इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ना ही जाने आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आईफोन डुओ जो इसी साल अक्टूबर 21st या 23rd से आप ख़रीद सकते हैं एंड प्री ऑर्डर्स 17th अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे. You are going to fork out around $4,299 for the entry-level iPhone Duo. This is a flip phone, जैसे कि Samsung का flip phone आया है, और $4,299. Will you be spending that much of money for an iPhone flip phone? या फिर you are going to jump the ship and you are going to go with Samsung? क्योंकि compared to iPhone, Samsung is quite cheap. अगर आप Samsung के फैन हैं do let me know, या फिर अगर आप iPhone के फैन हैं I would like to talk to you. 0800-004-866 पर आप कॉल करें, चाहे ऑन एयर चाहे ऑफ एयर. लेट्स टॉक फोन्स एंड लेट्स टॉक फोन प्राइसेस.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar chitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: 3, 2, 1, rush!
5: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
6: Go deal hunting this weekend at Briscoe's and bring home the savings with price-winning deals and incredible savings store-wide on the best brands for every room of the house. Briscoe's is the place. Saving is the promise till Sunday. See online for T's and C's.
7: Thinking of updating your bathroom? Refresh your home with Myco. With 80 years' experience, our expert team are here to help. Discover premium brands, style and quality all in one place. Make your dream bathroom a reality with Myco.
8: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
9: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग
10: रेडियो पब द FIBA वर्ल्ड वुमेन्स कप ये जारी है एंड कतार में ये The men's one will be in Qatar 2027, लेकिन women's division का खेल जारी है. Final stages में ये women's World Cup पहुंच चुका है. And looking at the matches for this year, semi-finals में France और Germany कल सुबह 2 बजे खेलने वाले हैं, 2:30 बजे खेलने वाले हैं, 2:30 AM. और फिर इसके बाद में Spain और USA tomorrow at 6 AM. Quarterfinals में USA ने Hungary को हराया, China की हार हुई at the hands of France. जर्मनी ने बेल्जियम को हराया एंड स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए सेमीफाइनल्स में अपना मुकाम बनाया है. तो कल 2 मैचेस होंगे, सुबह 2:30 पर फ्रांस और जर्मनी और 6 पर स्पेन और यूएसए. इसके बाद में द मैच फॉर थर्ड प्लेस मंडे 14 सितंबर को होगा सुबह 2:30 बजे. एंड द फाइनल फॉर द वीमेंस वर्ल्ड कप FIBA वीमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड ऑन दी ऑन मंडे 14 सितंबर एट 6 AM.

आपको मैं बताया था अबाउट द कीर्तन रिकॉर्डिंग जो हम करने जा रहे हैं ऑन द 25th of September. वेल फिजी कीर्तन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपको हम बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं. एंड अब फिजी कीर्तन संग्रह ये ऑकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग करने की ये तैयारी कर रही है ताकि आपकी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में हम पहुंचा सके. रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25th September को होगी वैदिक सेंटर पापाटोटो में और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है. रजिस्ट्रेशन कल रात को बंद होने वाले हैं तो रजिस्टर करने के लिए आपको फॉर्म्स फिल करना है. फॉर्म आपको मिलेगा जब आप हमारे पास KR लिखकर भेजें, लेटर K लेटर R लिखकर हमारे पास भेजें 5599 पर. अभी आप भेजें, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा फॉर द फॉर्म. फॉर्म फिल करें, जितने भी फॉर्म्स हमारे पास आएंगे उनमें से सिर्फ 20 आर्टिस्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे एंड सिर्फ 20 की रिकॉर्डिंग की जाएगी और ये कन्फर्मेशन आपको हम देंगे वंस यू फिल द फॉर्म्स इन की क्या आपको सेलेक्ट किया गया है या नहीं. रजिस्ट्रेशंस कल रात को बंद हो रहे हैं तो धड़ाधड़ KR लिखकर भेजिए 5599 पर अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं.

Radio Pub. चार बजकर दो मिनट हो रहे हैं एंड रेडियो पब पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप वीक 7 of 10 में प्रवेश कर चुका है एंड दिस वीक सम अमेजिंग मैचेस एंड अमेजिंग रिजल्ट्स अभी तक सामने आए हुए हैं। और थर्सडे को 27-25 से मनवातु ने तारानाकी को हराया। ओटागो ने टेस्मन को 57-33 से हराया। अ हाई स्कोरिंग मैच देट वॉज एंड अर्लियर टुडे अनदर हाई स्कोरिंग मैच ऑकलैंड और काउंटीज मनुकाओ के बीच में 43-33 से ऑकलैंड की जीत काउंटीज मनुकाओ से हुई है। लेटर टुनाइट 5:05 PM पर नॉर्थलैंड और वेकाटो खेलने वाले हैं। उसके बाद 7:10 कैंटरबरी और वेलिंगटन के बीच में खेल होगा एंड देन टुमारो दो मैचेस Hawke's Bay versus North Harbour at 2:05 PM and Southland versus Bay of Plenty at 5:05 PM. चार बजकर तीन मिनट हो चुके हैं। इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं रेडियो पब में। मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ और भी अपडेट्स इस गीत के बाद में हम आपको देते चलेंगे।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वेलिंगटन में है अगर आप, तो आज वहाँ पर ग्रैंड कीर्तन नाइट होने जा रहा है, जहाँ पर लोकल यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हुए वेलिंगटन सनातन कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन आज ला रहे हैं आपके लिए ग्रैंड कीर्तन नाइट. और ये हो रहा है एट द वाइनुयो माटा मेमोरियल हॉल, क्वीन स्ट्रीट, वाइनुयो माटा, वेलिंगटन में. तो अगर आप एकदम से खाली है आज शाम को और औसम कीर्तन सुनना चाहते हैं, तो अयान नारायण जो 13 ईयर्स के हैं और उनके साथ में तनुष नायडू, ये स्टेज पर आज परफॉर्म करने वाले हैं विद ए वेरी स्पेशल गेस्ट आर्टिस्ट. जैनी राम विल आल्सो बी परफॉर्मिंग टुनाइट. किड्स अंडर 12 फ्री एंट्री है, बाकी सभी के लिए $15 पर पर्सन. और यहाँ से ऑकलैंड से राधे राधे बॉयज के कुछ मेंबर्स गए हुए हैं टू वेलिंगटन टू सपोर्ट अयान नारायण. तो ऑल द बेस्ट टू तनुष नायडू एंड अयान नारायण एज वेल एज जैनी राम, आप सभी को. आई होप माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट कीर्तन नाइट टुनाइट इन वेलिंगटन. ऑल्सो supporting the Wellington Sanatan Cultural and Sports Association as well, and jitne bhi team hai and jitne bhi logon ne inki madad ki hai behind the scenes to make this Grand Kirtan Night possible, aap sabhi ko hum dhanyawad de rahe hain. Khel ba mein khatam hone ko hi hai and I'm just trying to get some updates of some kind about this match. नबिल बेक को रेड कार्ड दिखाया गया था, उसके बाद में सुबह पुलवन बेक 2-1 से ये गेम चल रहा था. और क्या ये गेम ख़त्म हो चुका है? आई एम ट्राइंग टू गेट एन अपडेट फ्रॉम द फिजी फुटबॉल एसोसिएशन पेज एंड यस जस्ट नाउ इट्स कम थ्रू. राइट, बा आर थ्रू टू द फाइनल. तो भाई क्राउड और भी ज़्यादा कल होने वाला है बा में, जबकि बा विल बी फेसिंग वन ऑफ द विनर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मैच. तो नेक्स्ट मैच बस थोड़ी देर में शुरू होगा 4:30 पर, और इस पर अपडेट्स हम आपको बताएंगे.
0: हम पर आपके साथ हैं चिकाश.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: चाहे जो भी हो, वी ऑल लव बॉलीवुड, चाहे अच्छे फिल्मों के लिए या फिर अच्छे गानों के लिए, अच्छे आर्टिस्ट्स के लिए या फिर अच्छे कंटेंट क्रिएशन थ्रू वेब सीरीज के लिए। तो भाई, बॉलीवुड को अगर आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है जिनके गानों पर आपने कभी ना कभी नाचा होगा या फिर आपके घर पार्टी हुई है तो आपके घर पे पार्टीज में उनके गाने ज़रूर बजते हैं और अभी भी टीवी पर भी ये आते ही रहते हैं। तो इनका नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1985 में एंड ही वॉज बोर्न इन दिल्ली। आपको बताना है कि भाई ये है कौन, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। इनका स्क्रीन नेम या फिर बॉलीवुड नेम या फिर आर्टिस्ट नेम क्या है, 5599 पर अपना जवाब दे। बहुत ज़्यादा हम आपको इनके बारे में नहीं बताएंगे, बस आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया 19 नवंबर 1985 बोर्न इन दिल्ली, ये है कौन। 5599 पर अपना जवाब आप भेज सकते हैं और देखते हैं कि जस्ट ऑफ द बैट कितने लोग इनको जानते हैं। मतलब इनका असली नाम तो है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, लेकिन इनका बॉलीवुड नाम क्या आप जानते हैं, इनका सिंगर आर्टिस्ट नेम क्या है, रैप कर लेते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस भी इन्होंने बनाए हैं और काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ में इनका 36 का आंकड़ा भी रह चुका है। आई थिंक दैट्स इट, दैट शुड बी हिंट इनफ फॉर यू गाइस। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है कौन ये?

0: You're listening to Chikash.
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: It's 28 after 4 p.m. and this is Jikash on Radio Pub. आपने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. फिजी में बैटल ऑफ द जाइंट्स के तहत सेकंड जो सेमीफाइनल है शुरू होने वाला है बस इन अ फ्यू मिनट्स. इससे पहले कुछ एंटरटेनमेंट जारी है एंड द मारा डांस ग्रुप इज एंटरटेनिंग द क्राउड एट द मोमेंट एट द 4R स्टेडियम एट गोविंद पार्क इन बा बिफोर Rewa Football Club takes on Nasinu in the second semi-final of the tournament. और इसके बाद में पता चलेगा कि बाग के साथ में कल फाइनल में कौन नज़र आने वाले हैं. वैसे कल एट गोविंद पार्क इन बा बिफोर द फाइनल 1:30 पर तावा के साथ में सेंगांगा खेलने वाली है एंड इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगा दे विल बी मेकिंग देयर वे इन टू द प्रीमियर्स नेक्स्ट ईयर. तो सेंगांगा और तावा इनमें से कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हैं. बा में है तो बा इज़ लाइक होम टू तावा क्योंकि बा के बा में काफ़ी प्लेयर्स हैं जो तावा से ही आते हैं एंड इस साल अगेन अंडर 19 के चैंपियंस हुए हैं तावा इन द सेकेंडरी स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स. तो हम आई एम प्रीटी श्योर कई सारे प्लेयर्स फ्रॉम द अंडर 19 डिवीजन विल बी मेकिंग देयर वे इन टू वेरियस टाउन्स सोकर क्लब्स जहाँ पर फिर वहाँ पर अपना सोकर ड्रीम्स वो परस्यू करने वाले हैं इफ़ दे आर नॉट गोना परस्यू देयर एजुकेशन एनी फर्दर. एनीवेज आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. इस अगले गीत में शामिल कर लेते हैं कीर्ति फ्रॉम फंगरे. आपने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड सवाल हमने आपसे किया है कि एक बंदे का नाम हमने पूछा है, एक आर्टिस्ट है जो रैप भी कर लेते हैं, बहुत बड़े बढ़िया गाने भी गाते हैं एंड रैप शो भी होस्ट कर रहे हैं. 19 नवंबर 1985 में इनका जन्म हुआ, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया. ये कौन है? अपना जवाब हमारे पास भेजिए 5599 पर.

इंटरनेशनल क्रिकेट की ओर देखें तो कई सारे खेल हो रहे हैं, इनमें से फिलहाल खेल जारी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। इस एंड ऑफ डे थ्री स्टम्प्स पर ये खेल रुका हुआ है, टेस्ट 3 of 3 एंड करंटली इंग्लैंड लीड्स 2-0। तो दो टेस्ट इंग्लैंड जीत चुके हैं एंड फिलहाल पाकिस्तान लीड्स बाय 129 रन्स। तो हो सकता है पाकिस्तान माइट बी एबल टू पुल वन बैक। इसके बाद में अभी खेल जारी है ओमान एंड हांगकांग के बीच में, जिसमें ओमान चोज टू बैट एंड दे आर एट 139 रन्स। नेपाल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में भी खेल चल रहा है, जिसमें फिलहाल नेपाल 219 रन्स पे है आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स। आज एलिया कुछ खेल हुए हैं, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मध्य में फाइनल जो हुआ ODI 8 of 8 पापुआ निगिनी और सामोआ के बीच में, PNG won by 144 runs। वनुआतु और इंडोनेशिया के बीच में भी खेल जारी है, ODI 7 of 8 ये चल रहा है, अभी भी शुरू हुआ है। वनुआतु अंडर 19 at 0 runs। और इसके बाद में आज 7:30 PM युगांडा और केन्या के मध्य में खेल होगा इन दी T20 अफ्रीका कॉन्टिनेंटल कप के तहत।

0: Fiji Football Association, Battle of the Giants Tournament, second semi-final जो जारी है नसीनू फुटबॉल क्लब और स्ट्रेटम PPCL रेवा फुटबॉल क――लब के बीच में, इसमें नसीनू हैज टेकन द लीड और रणित महाराज हैज स्कोर्ड फॉर नसीनू इन द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट 2026. नसीनू वन, रेवा कुछ भी नहीं.
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश.

0: Radio Hub. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Showerdome.co.nz.
3: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
0: Bollywood ka asli blockbuster. Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga. Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Yeah. Radio Pub.
4: पाँच बजने को आए हैं एंड रेडियो पब का आखिरी घंटा शुरू हो चुका है अभी से लेकर 6 बजे के बीच में मैं जिकाश यहाँ पर रहने वाला हूँ और कल दोबारा हम आपके साथ में ज़रूर शामिल होंगे इन संडे नाइट मेलोडीज़ जहाँ पर और भी जानकारी और भी एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आएंगे इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर टुमारो लेकिन अभी बातें करते हैं अबाउट BOG सेकेंड सेमीफाइनल जारी है और नसीनू इज़ लीडिंग बाय 1-0. इसके अलावा The NRL World Cup ये भी बस इट्स अराउंड द कोना और टूर्नामेंट डेट्स तो आप जानते ही हैं अक्टूबर 15 से नवंबर 20 के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा होस्ट है हम ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ निगिनी मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड पापुआ निगिनी में खेल खेले जाएंगे ओपनिंग मैच इज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हेल्ड On the 15th of October at Alliance Stadium in Sydney. So, बहुत ज़्यादा समय नहीं है between the finale of NRL and the first match of the Rugby League World Cup. Men's group में अगर देखें तो group A में Australia, New Zealand, Fiji and Cook Islands है. Group B में England, Samoa and Lebanon है. And group C में Tonga, Papua New Guinea and France की टीमें हैं. इस पर updates हम आप तक और भी पहुंचाते रहेंगे as we get closer to the competition.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: एक बहुत ही कंसर्निंग आर्टिकल ये मैं पढ़ रहा था एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट दिस क्योंकि इट माइट अफेक्ट समवन दैट वी नो और हु इज़ रियली क्लोज बाय एंड दिस इज़ डेमेंशिया. डेमेंशिया अफेक्ट्स थ्री पीपल डायग्नोज होते हैं विद डेमेंशिया, नॉट मंथली, नॉट वीकली, नॉट डेली, बट आवली. एक घंटे में तीन लोग डेमेंशिया से डायग्नोज होते हैं इन न्यूजीलैंड. दैट इज़ रियली कंसर्निंग. इस पर और भी स्टेट्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे बस थोड़ी देर में.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ ना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Yo.
1: Radio Pub. आपके आसपास कई सारे लोग हैं जो ज्ञान बांटना बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर होता है कि नसीहतें और ज्ञान आप किन से लेते हैं। अगर आपको लव के बारे में जानना है, भाई उनसे बातें करें जो लव, जिन्होंने लव किया है। अगर ब्रेकअप से आप गुजर रहे हैं, अगर आपको एडवाइस चाहिए, उनसे आप एडवाइस ले हु हैज़ बीन थ्रू यू नो ब्रेकअप। ऐसा नहीं है कि बस कहीं कहाई और सुनी सुनाई बातों को लेकर लोग एकदम से बाबा बन जाते हैं और आपके कानों में बस जो भी आए आपको सिखाने पढ़ाने लग जाते हैं। अब मान लीजिए इंटरव्यू पे आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप उनसे बातें करें जो जिन्होंने एटलीस्ट 3-4 इंटरव्यू इन्होंने अटेंड किया है, जॉब्स को थ्रू इंटरव्यू पाया है, द लेजिट प्रोसेस। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ असलियत में होता क्या है, क्योंकि अगर इंटरनेट पे आप देखेंगे तो भाई AI भी आपको ये बता सकता है, लेकिन अ पर्सनल टच, द पर्सनल फीडबैक और सजेशन आपको वही दे सकता है हु हैज़ बीन थ्रू द सिचुएशन, हु हैज़ बीन थ्रू द सिस्टम। ईदर दैट पर्सन शुड बी ट्रेन्ड इन दैट फील्ड, ट्रेन्ड प्रोफेशनली इन दैट फील्ड टू गिव यू एडवाइस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर द पर्सन शुड हैव गोन थ्रू द एक्सपीरियंस अ कपल ऑफ टाइम्स टू बी इन द पोजिशन टू गिव यू एडवाइस। ठीक है, दिस वॉज एडवाइस फ्रॉम मी टू यू। तो एनीवेज आगे बढ़ते कार्यक्रम में एंड लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड मेकर्स। एंड कल या फिर कल से पहले वाले शाम को मैं सुन रहा था सैंडी एंड रुजबे को, एंड व्हाट अ प्रोग्राम, व्हाट एन एपिसोड ऑफ ट्रेंड मेकर्स दे ब्रॉट। अगर आपको सुनना है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ट्रेंड मेकर्स तो 5599 पर आप TM लिखकर भेजे, एंड दिस इज़ फॉर रोवा यूजर्स ओनली। ट्रेंड मेकर्स इज़ ऑन रोवा ओनली, आप सर्च करें ट्रेंड मेकर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्यूरेटेड म्यूज़िक सेशन मिलने वाला है अराउंड अ यूनिक थीम जो ड्राइव शो में डिस्कस होता है विद सैंडी एंड रुजबे, फ्रॉम जॉनर्स दैट डिफाइन Eras to tribute celebrating legends of Bollywood, चाहे iconic singers हो, and they did a good great one on heartbreak, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया songs आप मैंने सुना है और सुनकर ऐसा लगा कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो गाने थे बहुत ही बढ़िया थे। तो चेकआउट ट्रेंड मेकर्स ऑन रोवा, TM लिखकर भेजे 5599 पर।

एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जाइंट्स 2026 सेकेंड हाफ में खेल जो चल रहा था बिटवीन रेया फुटबॉल क्लब एंड नसीनू फुटबॉल क्लब ये हाफ टाइम पर पहुंच चुका है. बोथ टीम्स आर लॉक्ड एट 1-1. रेवा 1 नसीनू 1.

0: लेकिन इट्स ऑल नॉट बैड न्यूज़, आप इससे बच सकते हैं. दे आर फ्यू सिंपल थिंग्स दैट आप कर सकते हैं टू सी दैट आपको ऐसी ऐसी बीमारी ना हो. द गुड न्यूज़ इज़ वाइल एज इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर एंड कांट बी कंट्रोल, देर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. गेट योर ब्लड प्रेशर चेक एंड कोलेस्ट्रॉल चेक रेगुलरली, मूव मोर एंड कीप योर वेट इन चेक, क्विट स्मोकिंग एंड गो ईजी ऑन अल्कोहल, keep on top of diabetes. अगर आपको diabetes है, keep connected, stay connected. Loneliness and depression are both risk factors for dementia. And don't ignore your hearing or eyesight. अगर आपकी eyesight कमज़ोर हो रही है, सुनने में तकलीफ आपको आ रही है, get yourself checked. Prevention is better than cure. Often overlooked, लेकिन poor eyesight or diminishing hearing can be linked to dementia risk. तो भाई, keep on top of the game or get yourself checked.
1: शुरू.

और राइट, हमने तो आपको कहा था कि अगर आपको नसीहतें लेनी है और एडवाइस लेना है तो मेक श्योर कि आपके सोर्सेस एकदम पक्के हैं और प्रोफेशनल से ही आप एडवाइस ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। एंड वन सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ एशियन फैमिली सर्विसेज। इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस। Pay attention to your feelings, reach in and check how you are doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support aapke liye available hai at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342, that is 0800-862-342, for free and confidential mental health support. If you or someone is in immediate danger, please call 111 or the emergency services. That's from Asian Family Services. इसके अलावा हमारे जो unfiltered team है इन्होंने बातें की है with Tanya Pinto, who is the senior trustee at Public Trust. Now trust के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि अपने assets है ये trust में रखना कितना ज़रूरी है या फिर will बनाना कितना ज़रूरी है। And if you write tomorrow, कि आपको मालूम है कि आपके असेट्स, आपके बैंक में जो पैसे हैं, किनको मिलने वाले हैं, यू माइट जस्ट अज्यूम कि आपकी बीवी को, आपके शोहर को या फिर आपके बच्चों को ये जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान आपने नहीं बनाया है, देन यू नेक्स्ट ऑफ किन माइट फाइंड इट हार्ड टू इनहेरिट दोज स्टफ। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, अगर आप जानना चाहते हैं, यू नीड टू लिसन टू दिस अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे, the episode they have recently done with the senior trustee at Public Trust, who breaks down what happens when someone dies without a will, who may be entitled to their assets, why having a partner doesn't necessarily mean they'll automatically receive everything. So aap message kare drive likhkar 25599 and you'll get access to this latest episode of Unfiltered with Sandy and Rusbe. मेरा यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। हम आपसे मिलेंगे अब टुमारो आफ्टरनून इवनिंग में 6 बजे विद संडे नाइट मेलोडीज। तब तक के लिए यू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ सैटरडे एंड मेक श्योर यू रेज योर वॉइसेस फॉर आवर वॉरियर्स टीम हु आर प्लेइंग अगेंस्ट द डॉल्फिन्स इन अ शॉर्ट वाइल। 6:05 PM पर यह खेल शुरू होगा। मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग दैट मैच लाइव एज वेल। तो अब द वाज एंड मिलते हैं कल शाम 6 PM विद संडे नाइट मेलोडीज। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, व्हाट एवर यू डूइंग मेक श्योर नो कटिंग कॉर्नर्स एंड बी सेफ आउट देयर। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर सैटरडे एंड द वीकेंड। क्योरा।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
7: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
6: हैवान, स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
8: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
7: ये आखिरी
6: हैवान, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
9: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Get 20% off selected Guardian fence panels and accessories. And get your seeds really growing with Yates 5-litre Black Magic Seed Raising Mix, now only $5.99. Mitre 10, your home for outdoor living.
10: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
11: Sorry about that.
10: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
12: Visit Flooring Extra at the Auckland Home Show this weekend for home show exclusive savings. Or discover the deals in one of our 10 Auckland stores. Hurry, savings end Sunday.

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बस।
1: ओ हीर की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
2: So what?
1: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
2: Big deal, dude.
1: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
2: चढ़िया चा फैशन दा।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jenku.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: डिब्बा खुल गया
2: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे।
3: संजना का डिब्बा खुल गया।
2: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.

0: myself into.
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का? और सलमान भाई? इन तीनों को एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के लिपस्टिक निकलता है ना,

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
0: DJ Mix, only on Hum.
5: I wanna see you dance. Boy, bye. Chal na chal to Delhi, le London. Baatein peene baad. Matak matak, just.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
7: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज, माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के 1 आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ 1 घंटे में कलेक्ट करो। टीज एंड सीज अप्लाई। स्किप द क्यूज एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
10: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
9: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
10: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
9: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
10: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
7: Winger Motors है आपका होम ऑफ चेरी, जहां नया SUV लेना इज इजियर देन यू थिंक। स्प्रिंग सेविंग

0: एवरीडे ड्राइविंग के लिए स्मार्टर चॉइस. विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन और पुकेकोई और winger.co.nz. ऑफर एंड सितंबर 30th.
1: DJ Mix, only on Hum.

0: ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: 1% फाइनेंस एंड $2,000 ऑफ एक्सक्लूसिव टू वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप। दैट्स राइट, गेट बिहाइंड द व्हील ऑफ JQ J7 SHS फॉर जस्ट $47,990 प्लस ऑन रोड कॉस्ट विद 1% फाइनेंस एंड $2,000 ऑफ। एक्सपीरियंस प्रीमियम स्टाइल, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सुपर हाइब्रिड एफिशिएंसी ऑल इन वन इंप्रेसिव SUV। हरी, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल एट 1% फाइनेंस। स्पीक विद जिमी टेलर एंड टीम एट वेस्ट सिटी ओमुरा जेकु। फॉर टीज एंड सीज हेड टू westcityautogroup.nz।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Phuket Kohi. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Phuket Kohi. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jenku.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज. चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का. आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए. Night Flight.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: डिब्बा खुल गया
2: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
3: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
2: डिब्बा खुल गया।
3: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years. Night.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम

0: इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज, माइटन एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के 1 आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ 1 घंटे में कलेक्ट करो। टीज एंड सीज अप्लाई। स्किप द क्यूज एट माइटन एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
3: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: driving you home?
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jenku.

घर याद किया, अब ये कहता है कौन छोड़ गया। तो तूने जिनके लिए दुनिया में धन को जोड़ा है, उन्हीं ने तुझको अंधेरे में ला के छोड़ा है। अब मदद को तेरी कोई नहीं आने वाला, इस मुसीबत से नहीं

वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजयी बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए यीशु के नाम में।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
0: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghi Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
3: हर हैवान इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है
4: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है बेवकूफ होना
3: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी
5: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम
4: ये आखिरी है
3: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
0: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
6: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट सेट समय हुआ रिजर्व के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सब के लिए एंड आई होप आपकी दिन बहुत अच्छा जाए एंड लेट मी नो आपकी वीकेंड कैसा जा रहा है व्हाट डिड यू गेट अप टू यस्टरडे सैटरडे को आई विल लेट यू नो मोर अबाउट माय वीकेंड एंड या लेट्स हैव फन फॉर द नेक्स्ट 6 hours आई विल बी हियर आपके साथ आपके कानों में बट या लेट्स गो बैक टू द म्यूजिक

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज आपके साथ एंड आपकी वीकेंड्स की टेक्स्ट देख रही हूँ एंड इट लुक्स लाइक एवरीवन की वीकेंड अच्छी जा रही है सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. मेरा भी वीकेंड अच्छा ही जा रहा है. कल आई स्लेप्ट टिल 11 बजे एंड उसके बाद दोस्त के साथ लंच गई. उसके बाद घर आके रग्बी देखा टीवी में रग्बी लीग और उसके बाद हाँ ऐसे ही दिन चला जाता है. हाँ ओ आई वेंट टू ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी गई. आई वाज लाइक संडे के यू नो इंस्टेड ऑफ टुडे आई गो आई मीन इंस्टेड ऑफ टुमारो आई गो टुडे. सो ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली हफ्ते के लिए एंड हाँ मेरा वीक मेरा सैटरडे वैसे ही गया बट वेरी रिलैक्सिंग एंड इट वाज रियली फन कैचिंग अप विद अ फ्रेंड. इट्स सो क्रेजी कि अब अडल्ट होने के बाद यू नो लाइक इतना आसानी से दोस्त के साथ हैंग आउट के लिए टाइम नहीं मिलता है. लाइक आई वांट टू मेक दैट टाइम बट देन मेरी फ्रेंड की टाइम नहीं मिलता है देन व्हेन मेरी फ्रेंड की टाइम मिलता है देन मेरा टाइम नहीं मिलता. यू नो लाइक इट्स सच अ हार्ड टाइम टू बुक दैट टाइमिंग क्योंकि समटाइम्स लाइक यू नो दोस्त की वर्क आवर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट और मेरी आवर्स आर डिफरेंट. बट एनी वेज आई एम ग्लैड हमारी फाइनली लाइक यू नो रीयूनियन हो गया एंड इट वॉज रियली फन. But yeah, let me know आपकी weekends कैसा हो रहा है 5599 पर.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ। बीजी कीर्तन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब हम फिजी कीर्तन संग्रह ऑकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग करके आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचने के लिए तैयार है। रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापाटोयोटे में होगी। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए टेक्स्ट KR 2599। ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। याद रहे, रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म अ रिकॉर्डिंग स्पॉट, सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी और हम रिकॉर्डिंग कन्फर्मेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 13 सितंबर, जो कि आज। सो मेक श्योर इफ यू'd लाइक टू पार्टिसिपेट, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए KR 2599। And who knows, आप भी हो सकते हो।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: दिस टाइम आई वांट फुल फ्रीडम

मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट सेट समय हो आज आपके साथ. सो अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में एक ट्रेंड हो रहा है, आई एम श्योर यू हैव सीन, जो सब अपनी फोटोज़ को चैट जीपीटी में डालकर 80s में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दे मेकिंग लाइक हाउ आई वुड लुक इफ आई वाज इन द 80s, एंड ये 80s की ट्रेंड हो रही है अभी. एंड विच गॉट मी क्वेश्चन, आपको कौन लगता है कि 80s के सबसे ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग, या यू नो हु इज़ योर 80s क्रश? जब 80s में आप बॉलीवुड मूवीज़ देख रहे थे, आपकी 80s की क्रश कौन था? लेट मी नो 5599 पर. आई वुड लव टू नो कि सबका फेवरेट, सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन था 80s का.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hum and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
2: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo, and red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
4: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
3: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
5: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
4: ये आखिरी
3: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
6: MediaWorks Complaints. How can I help?
7: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
6: Nice.
7: And you talked me into creating this funny character.
6: Great.
7: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
6: Are you?
7: Yes.
6: Are you Bobby the Baker?
7: Yes.
6: What's that thing you do again?
7: Stop it.
6: You bring the mouth.
7: Stop it.
6: I'll bring the pie.
7: Stop it, please.
6: Okay.
7: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
6: So what's the problem?
7: My name's Bruce.
8: Advertise with
9: MediaWorks.
6: New Zealand listens to us.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
11: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ, अच्छा
11: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूं आरज़ आपके साथ एंड ब्रेकफास्ट शो विजय और पूजा रिसेंटली टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी मेजर्स सक्सेस होम लोन्स से शादी तक एंड व्हाई लिसनर्स आर रीडिफाइनिंग व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी सेटल्ड सो आपको ये सुनना है देन टेक्स्ट मी BF2599 एंड आई सेंड यू द लिंक एंड दे विल बी बैक ऑन द शो टुमारो एट 6 AM

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल विद स्पीकर सेट, मैं हूं आरज़ू आपके साथ. एंड आई थिंक इस हफ्ते वेंसडे या फिर थर्सडे को मैंने एक घंटा सैंडी और विस्पी के शो में स्पेंड किया था. एंड उनकी एक सेगमेंट है जिसका नाम है कन्फेशंस. एंड बेसिकली एवरीवन सेज आई कन्फेस एंड से योर कन्फेशन. और मैंने क्या कन्फेस किया था कि आई सेड इन माई रिसेंट वर्क फ्रॉम होम, जो मैंने ऑब्वियसली घर में आई वॉज वर्किंग, और नॉर्मली मेरे काम 7 बजे से शुरू होता है. एंड सो instead of working from 7 AM, I slept through, or 10 AM में जाकर मैंने आँख खोली. और then I washed up quickly क्योंकि मेरी 10:15 में मीटिंग था. सो वी जस्ट गोइंग अराउंड टॉकिंग अबाउट आर कन्फेशंस एट वर्क. एंड हमने आपको भी टेक्स्ट करने के लिए बोला था 5599 पर. एंड वी गॉट दिस वन टेक्स्ट फ्रॉम अ नंबर, एंड वो टेक्स्ट रेड समथिंग लाइक दिस: I confess that I stopped listening to Sunday Breakfast Show because it's mainly in English and this is a Hindi radio station. And ooh, seedha dil mein laga little bit. Honestly, I'll be lying if I said I'm fine. But you know, I try to take it as a constructive feedback because I understand where that person is coming from, and I know ki. Hindi meri first language nahi hai, neither it's second, and I'm doing this because I love the culture. I grew up in, you know, Bollywood serials, Hindi serials se lekar everything, and like obviously I understand everything. And I know meri speaking mein problem hai, but I'm also trying my best. Or I also want to also represent people jiski Hindi mein bolne mein they are not that fluent. They are, you know, they want to learn. They're also trying to get better. And also for the second generation, ya fir third, jinko Hindi samajh mein aata hai, but like speaking mein, you know, they're like not confident. I also want to give them that confidence ki aap को जितना भी आता है यू कैन स्टिल स्पीक, डोंट फील शाई. आप अपनी ब्रोकन हिंदी में मेरे जैसे बात कर सकते हो. एंड आई फील लाइक व्हेन वी गॉट अ कॉलर थ्रू उसके बाद शाउट आउट टू हेजल. आई डोंट नो हाउ ओल्ड हेजल इज, लिटिल बॉय जिसने मुझे बोला था कि आप नेपाली बोलो, इंग्लिश बोलो, या फिर कोरियन बोलो, या फिर हिंदी बोलो, मतलब नहीं है, आप बस बोलो. एंड आई वाज लाइक ओह, इट ऑनेस्टली मेड माय डे. सो शाउट आउट टू हेजल, ऑनेस्टली यू मेड माय डे. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एनकरेजिंग मैसेजेस. ऑब्वियसली आई फील द लव, सो थैंक यू. एंड ऑब्वियसली सेइंग दैट, मैं अपनी हिंदी बेहतर करने बहुत कोशिश करने वाली हूँ. आई डोंट नो इफ इस साल आपको फ्लुएंसी मिलेगा, but I can guarantee ki every show mein I'm gonna be 2% better than I have today. But yeah, saying that, thank you so much for all your love, and yeah, let's get back into the music.

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

आप सुन रहे हैं प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ. बचपन से लेकर आज तक मेरे सॉन्ग्स बहुत इवॉल्व हुआ है. लाइक आई थिंक आई एम समवन हु लाइक्स मल्टी जॉनर. बहुत सारी डिफरेंट जॉनर्स बहुत पसंद है, फ्रॉम योर इंग्लिश की यू नो लाइक R&B पॉप हिप हॉप से लेकर बॉलीवुड की सॉन्ग्स एंड ऑल्सो इंडी songs like Anuv Jain ki ya fir the local train. But I also love my Nepali songs. Nepali ki bhi different genres hai, but you know, like classic Nepali songs, indie, there's some pop and like hip hop, and also rock, indie rock. I really enjoy that as well, Nepali mein. But I have grown up listening to Korean pop, K-pop, Korean R&B, and a bit of Spanish songs be. So bahut sari, you know, very mixed genre. But one area that I have not tapped into much is Punjabi songs. But I recently came across this song from Karan Aujla, and it's called Boyfriend. And honestly,

0: driving you home?
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ. वी हैव गॉट ट्रेंड मेकर्स, ये नई म्यूजिकल पॉडकास्ट जहां पे इट्स अ पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी वेयर एवरी सॉन्ग इज क्यूरेटेड अराउंड अ यूनिक थीम एंड ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़बे. फ्रॉम जॉनर्स दैट डिफाइन एरास टू ट्रिब्यूट सेलिब्रेटिंग द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड, आइकॉनिक सिंगर्स हो या अनफॉरगेटेबल एक्टर्स, ईच एपिसोड विल टेल अ डिफरेंट स्टोरी थ्रू म्यूजिक. So if you're planning a road trip या फिर आप एक long drive में जा रहे हो, we have got you covered. Yeah, हमारे पास एक बहुत specially curated playlist है to set the mood for you, keep the energy up and make every kilometer of your journey more enjoyable. So if you'd love to listen to it, text TM to 5599 या फिर आप search कर सकते हो Trend Makers on Rova. And you can only find this on Rova, R-O-V-A.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
3: तो क्या करें?
0: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800 722 462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
6: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favourite Mazda. Mazda.
8: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ, अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
14: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकिंग सेट समय हो आज आपके साथ. नेक्स्ट अप आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल द इनक्रेडिबल बॉलीवुड मूवीज जो हमारी लोकल थिएटर्स में रिलीज होने वाला है अगला 6 weeks, 7 weeks में. एंड या सो यू कैन कीप एन आई आउट सो यू कैन हिट द थिएटर्स व्हेन इट रिलीजेस.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ. सो बॉलीवुड मूवीज आई लव कीपिंग चेक्स ऑब्वियसली कब रिलीज होता है कब सो आई कैन गेट एक्साइटेड टू गो टू द थिएटर्स टू वॉच इट क्योंकि मुझे बिग हॉल में देखना पसंद है रादर देन ऑन द फोन एंड स्टफ. बट एनीवेज सो वी हैव सम एक्साइटिंग फिल्म्स बॉलीवुड फिल्म्स जो हमारी लोकल थिएटर्स इवेंट्स या हॉइट्स में रिलीज होने वाला है. सो सेप्टेम्बर 18th को वी हैव Dera with Kareena Kapoor starring and Prithviraj Sukumaran. Vibe, jo Kunal Khemu ka direction hai. It's an action comedy film starring himself alongside Preeti Zinta and Sparsh Srivastava. I'm very excited kyunki it's been long, very long since I've last watched Preeti Zinta ki film. So main bahut excited hu. इसके बाद वी ऑल्सो हैव सेम डे में ही लव लॉटरी. ये एक रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर है. इसमें अक्षय ओबेरॉय है. And September 25th ko we have two films, The Van, Force of the Forest. Ye ek high budget mystery fantasy thriller hai. And we also have Drishyam, The Conclusion, releasing on October 2nd. It is starring Ajay Devgan, obviously, kyunki obviously he's the man for this, and Tabu. And we have also October 9 mein Urta Teer, ye ek action comedy film, and Raftaar bhi release hoga October 15 mein. Ye ek drama hai featuring Rajkumar Rao aur Kirti Suresh.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
3: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
2: हैवान

0: नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
0: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: गो डील हंटिंग दिस वीकेंड एट ब्रिस्कोज एंड ब्रिंग होम द सेविंग्स विद प्राइस विनिंग डील्स एंड इनक्रेडिबल सेविंग्स स्टोर वाइड ऑन द बेस्ट ब्रांड्स फॉर एवरी रूम ऑफ द हाउस। ब्रिस्कोज इज द प्लेस, सेविंग इज द प्रॉमिस टिल संडे। सी ऑनलाइन फॉर टीज एंड सीज।
4: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
5: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
8: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
0: That is very that is a very acceleration.
8: That's a very acceleration. Yeah.
0: Amazing acceleration.
8: This is my fancy English. That's a very.
0: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

आप सुन रहे हम सने ब्रेकफास्ट शो विद आरजू। फिजी कीर्तन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में आपकी सहयोग के लिए धन्यवाद। अब हम फिजी कीर्तन संग्रह ऑकलैंड के कलाकारों की रिकॉर्डिंग करके आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचने के लिए तैयार है। रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापातोई में। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए टेक्स्ट KR टू 5599 और उसके बाद आई विल सेंड यू अ लिंक एंड वो लिंक में आप क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन रजिस्टर। याद रहे रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म अ रिकॉर्डिंग स्पॉट, सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी और हम रिकॉर्डिंग कन्फर्मेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 13 सितंबर जो कि है आज। सो या मेक श्योर you send through ASAP. So text KJ KR to 5599 and register yourself. T's and C's apply.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
8: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Get 20% off selected Guardian fence panels and accessories. And get your seeds really growing with Yates 5-litre Black Magic Seed Raising Mix, now only $5.99. Mitre 10, your home for outdoor living.
9: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
10: Brewing good vibes, Sunday style.
11: Sunday breakfast on Hum.
10: Zaika to feel ho. Tickle your taste buds.
12: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट सेट्स, और मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड आज एक्चुअली सितंबर 13 चॉकलेट डे है। सो आप डाइट में हो या फिर नहीं, यू हैव टू ईट चॉकलेट डे, ये आपका रीज़न है। सो इफ़ यू फील लाइक ओह नो आई कांट, चॉकलेट डे है, सो यू कांट नॉट ईट चॉकलेट। इट इज़ अ डे टू ईट एंड एन्जॉय चॉकलेट, सो मेक श्योर आप एक बाइट ले लिए फॉर चॉकलेट डे। And I would love to know for you, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड में सबसे बेस्ट चॉकलेट क्या है? For me personally, I think Whittaker's, but I know some people love Cadbury and other brands. So let me know आपकी फेवरेट चॉकलेट क्या है। 5599 पर

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: Leandro Spee on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज माइटन एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के वन आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ एक घंटे में कलेक्ट करो. टीज एंड सीज अप्लाई. स्किप द क्यूज एट माइटन एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
2: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
3: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह.
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 30

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: Fresh deals on favorites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: Go deal hunting this weekend at Briscoe's and bring home the savings with price-winning deals and incredible savings store-wide on the best brands for every room of the house. Briscoe's is the place. Saving is the promise till Sunday. See online for T's and C's.
11: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Manukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Manukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
12: Chill, sip, smile.
13: This is Sunday Breakfast.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड आज चॉकलेट डे के साथ साथ इट्स ऑल्सो पीनट डे. सो इफ़ यू लव सम पीनट्स देन yeah, have some peanuts today. But साथ में एक दूसरा डे भी है, इट्स कॉल्ड अंकल सैम डे. सो If you have an Uncle Sam, obviously Sam is such a gora naam, but if you have Samar, Uncle Samar, Uncle Samarth, Uncle Samir, Uncle Sambhav, anyone with the Sam, then aapka Sam Chacha, Sam Mama, make sure aap apke uncle ko happy Uncle Sam Day zarur bolna text mein. Just, yeah. A special day for your Uncle Sam's.

आप सुन रहे हैं प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजव के साथ. अब मेरा टाइम आ चुका है, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब ये माइक ऑफ करूँ आज ये हफ्ते के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी आज. इट्स ऑलवेज फन एंड आई विल सी यू व्हेन आई सी यू.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।